0: मंत्र खै नसै
1: जिसका साधन कृपा तारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: तित पै जूके परम गवन
0: सुनान कर हर जस सर्वन
1: निर्गुण।

0: मन मंगल
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साध संग अगण सागर तरो
1: आर्तन के पर ले पंडार
0: गुर पूरे नमस्कार
1: प्रेम कुशल सहज नंद
0: साध संग पाज परमानंद।

कोई अड़ेल सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरताय आवई दुख दर्द पाओ निकट ना तेरे नर के रहे।

मैं उस परमात्मा दयालु नूं सेवी सेवा याद करां दिन रात दिने रात ही। नाम अमोल है, जिहदा नाम बड़ा अमोलक है, जिहदा मुल ही कोई नहीं। तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया, बेनती करिए हे वाहिगुरु तू उत्तम, हे वाहिगुरु तुसी बड़े उत्तम श्रेष्ठ वड्डे हो नीच, असी सच्चे पातशाह नीच नीवे हाँ, औगणा दे भरे हाँ, पर सेवक कांडिया तुहाडे सेवक कहे जाने, तुहाडे सच्चे पातशाह सेवक कहे जाने, असी महाराज है सेवक नहीं पर सेवक कहे जाने, सिख नहीं गए, सिख तेरे कहे जाने कि गुरु नानक देव दा सिख, साडी करतूत सिखां वाली है ही नहीं, गुरु नानक देव दी सिक्ख्या ते चलदे ही नहीं। इदा हे परमात्मा असी सेवक कहे जाने, सेवक है नहीं। नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया, समाप्ति ते गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह मेहर करदे ने भाई बेनती करो हे वाहिगुरु, नानक नदर करे हो, हे परमात्मा साडे ते मेहर कर, मेहर दी निगाह कर, दया दृष्टि कर सच्चे पातशाह, मिले सच वांडिया। पिंडा थावां तों आपां आए हां पंजाब देश तों, ते जदों कणक पक जांदी आपां कहिंदे वाढी पै गई, वाढी, वाढी का अर्थ हुंदा है फसल नूं कट के धरती नूं वख कर देना, उहनूं कहिंदे वाढी। इह वी उही अर्थ है कि हे परमात्मा मिले सच वांडी आ, मैं विछड़ी होई आ, हे परमात्मा मेरी जीव आत्मा तेरे तो विछड़ी हुई है, टुटी हुई है, विछड़ चुकी है, ते कृपा करो मिले सच, सच्चे नाम विच मिल जावे, इह मेरे ते मेहर करो, मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग स्नेहो, नाम बिना जो पहरे खाए जो कूकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिसिया सिगार, नाम संग मन प्रीत लाल लावे, कोड़ कर्म कर तो नरक जावे, हर का नाम जिन माना अरादा, चोर की न्याई जामपुर बादा। इस वास्ते वाहिगुरु नाम की दात बख्श, ये पवित्र शब्द गुरु नानक देव जी की मुबारक रसना तो चारिया होया, सच्चे पातशाह ने कृपा की, अर्थ विचार किए ने, नाले उस महान जरनैल जिन्हों का कल शहीदी दिहाड़ा है। सो पंथ के पहले बादशाह सत्कारयोग बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, इन्हों का असली नाम सी अमर छकन तो बाद बाबा गुरबख्श सिंह जी, तो प्रसिद्ध नाम है बंदा सिंह बहादुर। तिन्हां नूं सत्संगियो दिल्ली दे सो कुतुब मीनार दे नेड़े शहीद किया गया, तिन्हां दी शहीदी का प्रसंग कल नूं श्रवण करांगे, भुल्लां दी मुआफ़ी बख्शनी, अगाह वास्ते समत बख्शनी, शुकर गुरु का धन्नवाद आप संगतां दा, प्रबंधक वीरां दा, गुरु के वजीरां दा, सच्चे पातशाह नाम दान रहमतां दे नाल झोलियां भरन, उन्हां महान शहीदां नूं याद करदे रहिए तां कि कौम की सदा चढ़दी कला रहे। समाप्ति दीआं पंक्तियां गाईए, फतेह बुलाईए जी।

गुरु रूप साध सिंह जी कीर्तन की समाप्ति है। होइया भुला चुका की खिमा बख्शिश करनी जी, सब संगत का, बच्चों का, सब का बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़ी सोहनी संगत साड़ना की है। इतनी छोटी उम्र के सतगुरों ने इन्हों बहुत वाला गुण बख्शिश किया है। बड़े बड़े राग बजाते हैं और इन्होंने असी अरदास करते हैं कि गुरु महाराज होर इन्हों तरक्की बख्शिश करे, ता जो इस तरह खलकत दी और कौम दी पंथ दी ये सेवा कर सका।

खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप संगतां ने शाम दे दवान विच हाजरी भर के गुरबाणी कथा कीर्तन दे लाहे प्राप्त कीते हन। सतगुरु साहब जी रहमत करन, सबनी दर हाजरी प्रवान करन, दरों करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शन जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

प्रपय सहाई श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत नाहनाथ न चुटै निकट ना जाय हो दूत सलोक महला पंजवा।

हल्ला पहला गगन में थाल रवचा दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आन लोह पवन चबरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शुभ दुवा जंत पेरी राव सहस्त उनैन नन नैन है तोय कौ सहस पूरत नना एक तो ही सहस पद बिमल नानिक पद गंध बिन सहस्त गंध इविचलत मोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिस्त चानन सब मैं चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत सुपावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदनो मोहे आहे प्यासा कृपा जल दे नानक सारंको होए जाते तेरे नाय वासा

मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद

महादेव वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। श्री अंगद गुरु ते अमरदास रामदासी हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ निधि आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी धार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी। आप जी ने कृपा रहमत की अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मन होके दर्शन दीदार बख्शे हैं। आप जी का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान की संपूर्ण तबरंत आप जी के पावन स्वरूप के सुख आसन की सेवा हुई है। सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल जुग की खिमा बख्शना आपके भाणे विच दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया ही रहना आपके भाणे विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनिया सेजा ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जाग ने दर्शन बख्श के निहाल करना सही। प्यारे मेल जिन्हां मिलिया उनका नाम चिता वे नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु आए गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

कर्म धर्म बंधकारी पाप पुन जग जाया भाई बिनसह नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई कर्म सबे बेकारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अज दे बख्शे हुए फरमान गुरु साहब दे अंग 635 636 ते सुभायमान हन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की

प्रभु के स्मरण गर्व नाम स्वाय प्रभु के स्मरण दुख जमन स्वाय प्रभु के स्मरण काल पर हर प्रभु के स्मरण दुष्मण टराय प्रभु स्मरण

प्रभु के चरणों में हर गुणवान ने प्रभु के चरणों में सहज समान ने प्रभु के चरणों में चले आसना प्रभु के चरणों में कमल विगासना प्रभु का सिमरण आन हार चुनकार सुख प्रभु सिमरण का अंत ना पार सिमर से जन जन को प्रमाया नानक तिन जन सरणी पाया हर सिमरण कर

जयमस कोलो होवे अत पारी हर को नाम खिनवाय उदारी अनक पुनचन करत नहीं ताराय हर को नाम कोड़ पाप पर हराय गुरमुख

वाणी ओत बोधन रस रात सुन समाद नाम रस माते आठ पैर धन हर हर जपै हर का पग प्रगट नहीं छपाए हर की

जय प्रसाद सति अमृत खाए तृचाकर को राख मान माए जय प्रसाद सुगंध तन लाव तस्को सिमर परम गत पाव जय प्रसाद बसा सुख मंदर तिशे आय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमर तुसुरसना जय प्रसाद

जय प्रसाद तर स्वगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकर प्रवता कह जय प्रसाद तुझ कौना पहुँचे मन सा सिमर प्रभु उच्चय जय

साधक संघ मुख्य जल होत सा संघ मल सगली खो साग संघ मिट अभिमान साग संघ प्रकट सो ज्ञान साग संघ बुझे प्रभ नेरा सा संघ सब होत मेरा साग संघ पाए नाम रतन साग संगे को पर जतन साधक महिमा बन कौन पराने नानक साग शुभ ब्रह्म समाने साग संघ गोचर मिले साग संघ सदा पर फुलाए

गृहस्पति ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सुर सर्व को सुख ब्रह्म ज्ञानी के अधिष्ठ समान।

मंत्रने अंदर सुमरण गोपाल सभी परोवर कृपाल आप दृढ़ अवर नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे।

कई कोट अंध अज्ञाने कई कोट कृपन कठोर कई कोट आवेगातम ने कोर कई कोट पर दर्प को रहे कई कोट पर दुख न कराए

पर बेचारा है दुहासरा गया स्वामी कहला बेचा अंतर जामे जो पावे सो कार करावे नान दृष्टि अब न आवे कौ माने ते क्या हुए आवे ज्योत पावे सोई करावे इसके हाथों इतना सब चले ज्योत पावे सोई करे अनजान दिव्या में रचे जे जानता अपना बचाए पर मैं भुला दे दितावे नमक में चार खंड भरे आवे

कबू आप गृत में आवे कबू पला पला कहावे जो प्रभु राखे तभी रहे गुरु प्रसाद नानक सा चुका है।

संग दुखी को डन लागा संग दुखी को सब त्याग संग दुखी मंकारी संग दुखी सदा बिकारी संग दो संग दुखी जन्म मरा संग दुख ना स

चरण जल मार गोविंद मिट है पाप जपियर बिंद कर हर कर्म सर्वनार कथा दरगा नानक उज्जल मथा बड़ भागे तन जग माए सदा सदार के गुण गाय राम नाम जो करे विचार से तन मंद गणी संसार मन तन मुख बोले।

अपना तिन जन दे जैन जन अपना प्रभु छाता सो जन सर्व का दाता तिसका शरण सर्व सुपा में तिसका दर सब पा मिटाव है।

के कार्यरास सेवा करतो है न कामे तुझको प्राप स्वामी अपनी कृपा जिस करे नानक सो सेवा गुरु की मातले।

कथ गरुड़ भागी पाई सफल दर्शन पे कृपाने पारस्वत चरण गंधर्मल रेत भेटत संग राम गुण रवै पार ब्रह्म की दरगाह गवै सुन कर वचन कर।

जिस धन को चार कुंट उठतावै सो धन हर सेवा ते पावै जिस सुख नित बाछै मीत सो साधु संग परीत जिस सुभा को करा भली करनी सो सा सुभा पधर की सरणी अनको पावे रोग न जाए रोग मिटाराव खदलाए सुन धन मेरे नाम धन जपना ने दरगाह परवान

भगवान सर्व बैकुंठमुख तुम गो पाए एक नम करके गुन गाय अनुग्राय भोग बटे आयर के नाम की कथा मन पाए वो भोजन का प्रसंगित रसना जपती हर हर नीत पाले सो करने सो बातनवंत हृदय से पूर्ण

जब इसका भरण चेना जावत तब हरितो किस व्यापत तब यापन आप अपार ब्रह्म तब मोह का किस होवत परम आपन खेला वर्ति जा नानक नया न दूजा जब हो प्रभु केवल तनी तब बंद मुक्त कहो के सुको गनी जावे कैर अगम अपार तब नरक स्वर्ग को कौन अवतार जब नरक प्रभु सब सुभाए।

कौन बंधन बाधे आपना पापे चरदा नानक अपनो पापियो पर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता दैव मैल कहो क्या तोता जय निरंजन रंका निर्वाणता कौन कौमान कौन अभिमान।

सुमान अपमान प्रकार के बखियान आपन खेलाव कर देखा खेल संकोच तो नानी के कह जय भगत भगता अवजय पसरा पसार संत प्रताप दोहो बाका पे तो नहीं उनकी स्वभावन बनी आप कौत कर आनंद चोज आप रस बोध जोगो जिस पावे से आप ना लावे जिस पावे खेल खिलावे

सरस्वती संत संगंत्र प्राप्त ठा ना प्रभु काला गिठा सकल समग्री एक सकाठ माहे अनेक रंगना ना दृष्टा है।

जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिबतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपां लख होहे ता इक न चलै नाल केव सचियार होइए केव कूड़ै तुटै पाल

असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तापताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख

ओंकार असंख मूर खंद कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल पख खाहे।

अनंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सरपार होय अखरी नाम अखरी सला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखन बोलन बान अखरा सिर संजोग बखाणम

हित है, तेरे मान है, निदान है, तेरे वर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अदे है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपहूत है, अपर्ण है, अगांज है, अपांज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है,

कर्म दृश्य धर्म सर्वापरनाडय अंडड भाडय चारी शांत वय प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे पारे हरियं करियं नामे कामे पजांग प्रयाशंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चारी छंद

स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे

0: पहला पानी जियो है जो दरिया सब कोए सूद क्यों कर किए सूद पवे रसो नानक सूद को ना सो नानक सूद के बना उतरे ज्ञान उतारे तुए महला पहला
1: मन का सुत के लोभ है जेवा सुत कूड़ की सुत के वेखना।

जौ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जै सिर दी जय कान की जय सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन के हेत

0: मनै सुरत होवै मन बुद्ध,
1: मनै सगल भवन की सुध,
0: मनै मोह छोटा ना खाए,
1: मनै जमकै साथ न जाए,
0: ऐसा नाम निरंजन होए,
1: जेको मन जाने मन कोए,
0: मनै मार्ग ठाक न पाए,
1: मनै पत सिउ प्रगट जाए,
0: मनै मग न चलै पंथ,
1: मनै धर्म सेती संबंध,
0: ऐसा नाम निरंजन होए,
1: जेको मन जाने मन कोए,
0: मनै मार्ग ठाक न मनै पावे मोक द्वार,
1: मन्ने परवार है साधार,
0: मन्ने तरे तारे गुरसिख,
1: मन्ना नानक पवहै न भिख,
0: ऐसा नाम निरंजन होए,
1: जे को मन जाने मन कोए।

आखह ईसर आखह सिद्ध आखह दानव आखह देव केते आखह आखन पाहे इते कीते होर करह जेवड़ पावे तेवड़ होए जेको आखह बोल विगाड़ सोदर केहा सो कर केहा जित बह सर्व समाले।

0: चेत गोपत लिख जान लिखन कर्म विचारे
1: गावे ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे
0: गावे इंद्र इंद्रासन बैठे देव ते आदर नाले
1: गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे
0: गावे जति सती संतोखी गावे वीर करारे
1: गावन पंडित पढ़ने ठीसर जुग जुग वेदा नाले
0: गावे मोणिया मनमोहन सुरगम अच्छ प्याले
1: गावन रतन उपाय तेरे अठ सर तीरथ नाले
0: गावे जोत महाबल सूरा गावन खाणी चारे
1: गावे खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर
0: से तुतनो काव है जो तुत पावन रते तेरी भगत रसाले सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई जो तिस पावे सोई करसी हुकम न करना जाई मुंदा संतोख सरम पत ढोली ध्यान की करह विभूत आई पंथी सगल जमाती मन जी तै जग जीत भगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाज है नाद
1: नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरासा

0: आते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं
1: प्रमाण हैं निदान हैं दरबार्ग हैं असर्ग हैं
0: अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं
1: अजन्म हैं अबर्ण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं
0: अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं
1: अमीक हैं रफीक हैं अतंद हैं अबंद हैं
0: निर्बुज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं
1: अला हैं अजा हैं अनंत हैं महंत हैं
0: अलीक हैं निरसरीक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं
1: अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अचूत हैं
0: अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं
1: अजीत हैं अपीत हैं अबा हैं अगा हैं
0: अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक है प्रजंग प्रयाचंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने
1: नमो देव देवे अपेक्षे अपेवे
0: नमो काल काले नमो सर्व पाले
1: नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे
0: नमो असनंगी अनाथे नरसंगी प्रमाथे
1: नमो पान पाने नमो मान माने
0: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने
1: नमो गीत गीते नमो तान ताने
0: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
1: नमो पान पाने नमो बाद बादे
0: अनंगी नामे समस्ति स्वरूपे
1: कलंकी प्रमाथे समस्ति विपुते
0: कलंक बनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राज राजे संग परम रूपे
0: नमो जोग जोगे सुरंग परम सिद्धे
1: नमो राज राजे संग परम रिद्धे
0: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षीय परमीय भोगी अपुगते
1: नमो जोग जोगे सुरंग परम जुगते
0: नमो नित नारायण क्रूर कर्मे
1: नमो प्रेत प्रेत देवे सोतर्मे
0: नमो रोग हरता नमो राग रूपे
1: नमो साह नमो पूपे
0: नमो दान दाने नमो मान माने
1: नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान
0: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग
1: नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे अरूपे समस्त व्यवासी
0: सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करदा
1: अदो अर्ड अर्डं ओ अगं ओ घरता
0: परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं
1: सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं
0: अछेदिये भेदिये नामंग कामं
1: समस्त पराजी समस्त स्थामं
0: तेरा जोर चाचरि छांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं
1: प्रभु है जू है देश है अपेश है
0: जंग प्रयात छांद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे
1: नमो सर्वान समस्ती न दाने
0: नमस्तवंग निर्नाथे नमस्तवंग परमाथे
1: नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग पंजे
0: नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाले
1: नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे
0: नमो राज राजे नमो साज साजे
1: नमो सा साहे नमो माह माहे
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
1: नमो रोख रोखे नमो शोक शोके
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
1: नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग
0: नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व नमो परमतानंग
1: नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग
0: नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्ण
1: नमो सर्व रंगे तरपंगे अनंगे
0: नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे
1: अखिजे अबेजे समस्तं प्रसेजे
0: पालंग स्वरूपे को कर्मं प्रणासी
1: सदा सर्वदा रिद सिद्धं नमासी
0: चरपट छांद तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे
1: अखल जोगे अचल पोगे
0: चल राजे टल साजे
1: अखल तर्मंग अलख कर्मंग
0: सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता
1: सर्वंग पाने सर्वंग माने
0: सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग
1: सर्वंग पुख्ता सर्वंग युक्ता
0: सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग
1: सर्वंग काले सर्वंग पाले
0: रुवाल छंद तो प्रसाद आद रूप नाद मूर्त जोन पर खपार
1: सर्वान तर्मान देव पेवाद उदार
0: सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल
1: चतुर्थ बराज ही अवधूत रूप प्रसाद
0: नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नरेख
1: आद पुरखदार मूर्त जून आद सेख
0: देश और न पेश जाकर रूप रेख नराग
1: चतुर तत्र दशे फिसे हो फैले हो अनुराग
0: नाम काम बहीन पेख ताम हूँ नह जाहे
1: सर्वमान सर्वतर्मान सदैव मान ताहे
0: एक मूर्त नेक दर्शन कीन रूप नेक
1: खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक
0: देव फेव न जान नहीं जह वेद और कतेब
1: रूप रंग न जात पात सो जान नहीं के जेब
0: ताद मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन
1: चक्र वक्र फिर इज्जत चकमानी प्रतीन
0: लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप
1: आद देव नाद मूर्त स्थापे सब जय थाप
0: परम रूप नीत मूर्त पूर्ण परख पार
1: सर्व से रच स्वम पव गण पंचरहार
0: काल ही इन कलस जोगत का अकाल पुरख देश
1: तम तम सुपर्ण मनायत पूत लख पेश
0: अंगराग न रंग जा कह जात पात न नाम
1: गर्भ गंज दुष्ट पंचन मुक्त दायक काम
0: आप रूप मीक अनुस्तत एक पुरख दूत
1: गर्भगंजन सर्वपंजन आदरूप सूत
0: अंगहीन भंगन आत्म एक पुरख पार
1: सर्व लायक सर्व कायक सर्व को बत पार
0: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख
1: सर्व शास्त्र न जान ही जे रूप रंग अरेख
0: परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित
1: कौत सिमरत प्राण शास्त्र न आवे वो चित
0: मद पार छंद तो प्रसाद गुण गान उदार महिमा अपार
1: आसन अपंक उपमान

0: मन मन मन प्रणाम निरपय काम
1: आत्मदत्त प्रचंड मित गाता कांड
0: आलस्य कर्म अदृश्य कर्म
1: सर्व प्रणाडीय अरंड बाडीय
0: चाच छंद तो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उतारे पारे
1: हरि अंकरे नाम है काम
0: भजन प्रिया छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता
1: चतुर चक्र दान है चतुर चक्र जान है
0: चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र प्रती
1: चतुर चक्र पाल है चतुर चक्र काल है
0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे
1: चतुर चक्र मानिय चतुर चक्र दानिय
0: चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परम न पितरे
1: न कर्म न काय जन मंगा जाय
0: न चित्रे न मित्रे परे है पवित्र
1: प्रति से अदृश्य अदृश्य अकृ से
0: भगवंती छंद तो प्रसाद कथते के छिज देसे के आप भिज पेसा है
1: क्या गंज कर्म है क्या पंच पर्म है
0: क्या भिज लोक है क्या आदित्य शोक है
1: के अवधूत बढ़ने के विभूत करने
0: के राजन प्रवाह है के धर्म तुझा है
1: के आशोक बढ़ने के सर्व बढ़ने
0: के जगत कृति है के शतरंग क्षत्रिय है
1: के परम स्वरूप के अनुपो अनुप
0: के आद देव है के आप अपेव है
1: के चित्र महीन के अधीन
0: के रोजी रजा के रही में रहा के
1: पाक वैब है के गैबल गैब है
0: के अफल गुनाह है के साह अनुसा है
1: कारण कनंद है के रोजी दहिंद है
0: के राजक रही में के कर्म करीम है
1: सर्वंग कली है के सर्वंग दली है
0: के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दानिया है
1: अचलंग अनंग है अमित तो अपंग है
0: मद पार छंद तो प्रसाद मन मन उदा मन मन pranam gungan madam
1: arbarakat
0: arnar manja pranam manman salam
1: arnara khanda barnara manda
0: anpavanas manman prakash
1: gungan pranam jalthal madam
0: anachajang asan apang
1: upama apar gatmeto dar
0: jalthal amand desavesapand
1: jalthal mand desvesveyant
0: anpavanas tritatar atras
1: ajan bahu ekesadaho
0: omkarat kathriyanad
1: kal kal kal khand kyal
0: kar kar pranam chit charan naam
1: anchej gat ajejna bat
0: achan gat anaranj bat
1: antata par antotha par
0: adit karam atatit karam
1: anvar anant mata mahant
0: har bol mula chand to prasad karnalya hai ar kalya
1: hai kalkandan hai mal mandar hai
0: jagdeshwar hai parmeshwar hai
1: kar hai sabban hai
0: jit kya taran hai jag jag kya karna hai
1: man mane hai jag jane
0: hai sarvang par hai sarvang kar hai
1: sar pasya hai sar nasya hai
0: karnakar hai visvambar hai
1: vishwar hai jagdeshwar hai
0: brahmandas hai khalakhandas hai
1: parte par hai karnakar hai
0: ajappa jap hai athappa thap hai
1: krita krita amrita amrit hai
0: amrita amrit hai karnakrit hai
1: krita krita tarni trita hai
0: amteshwar hai parmeshwar hai
1: krita krita amrita amrit hai
0: ajva krita amrita amrit hai
1: narnayak hai kalkayak hai
0: visvambar hai karnalya hai
1: नायक है सब कायक है
0: पव पंजन है अरगंजन है
1: तापन है जब चापन है
0: अलंकन सर्वाकृत है
1: सर्ता हर है हरता हर है
0: परमात्म है सर्व आत्म है
1: आत्म बस है जस के जस है
0: भुजंग प्रयात चांद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे
1: नमो राज राज नमो इंद्र इंद्र
0: नमो अंधकार नमो तेज तेजे
1: नमो बिंद बिंद नमो बीज बीजे
0: नमो रार संग ताम संग सात रूपे
1: नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूप
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो
0: नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो बोझ बोझे नमो पान पाने
0: नमो कलाकर्ता नमो शांत रूपे
1: नमो इंद्र नाथक बेपुते
0: अलंकार रूपे अलंकार लंके
1: नमो आशा से नमो बांग पंके
0: अपंगीस रूपे अनंगी अनामे
1: अपंगीस कामे अनंगी अकामे
0: एक अछरी छंद अजाल पै
1: बु अनाश का
0: गंज पंज लख पख
1: दयाल लेख पेख
0: नाम काम गह अठह
1: नरागे
0: नरंगे नरूपे नरेखे प्रियंग प्रिया छंदन मसल प्रणाम समसल प्रणाम से कर्मंग विभूते समस्त स्वरूपे सदा सस्तनंद सतरंग प्रणासी अजाय विभूते गजाय गनी में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते संभव सर्व

0: गुरसान बिराज सत्तर सवै वे लोग चपाएंगे
1: मानव इंद्र गजेंद्र नराधव जोन तर लोग को राज रहेंगे
0: कोटि स्नान गजाय दान अनेक सोम बरसात बरएंगे
1: ब्रह्म हेसर बिसन सची पंत अल्त फसे जम्मा पास बरएंगे
2: ये नर श्री पद के पास है।

0: से मोरो परिवार सेवक सिख मारे सबे करतारा
1: मोरो चारिक करतार करिये सबे रण को आचन करिये
0: सा तोज पर किया है प्यासा
1: तोला चार कोई अब ना त्याओ जो बचाओ सुतम दे पाओ
0: सिख मारे तारिय चुन चुन सतर मारे मारिय
1: आ बात है मुझे बढ़िया मन काल का त्रास ने बढ़िया
0: सदा हमारी पच्छा सी

0: अभ्रचामेलीटं करो शिखियो बाराशिक्षं करो
1: सकल मलेश करो रण काता
0: जीत सनी परे तन के दोष त दुख होए मारे
2: जब पाक परे तैयार है तुम के तुम संकट सब तारे
0: जो कल

0: रूप नगरी आया।
1: गुरु प्रसादी बुझिया जावे कार एक है हर बे नवर न चार कोई।
0: करनाक ए ने पर अंत से सकल मिले दिष्ट होई।
1: साचे सुनने नो पठाए,
0: साचे सुनने नो पठाए श्री लाए सो सतबाड़ी।
1: जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस माणी।
0: सच बाक बढ़ाए ताकि गत के ही ना जाए।
1: कह नानक अपने नाम सुनो पवित्र होवा साचे सुनने नो पठाए।
0: अजियो गुफा अंदर राह के वजा बन बजाए,
1: बजाया वजा पवन नो द्वारे प्रगट किए जिसका हाथ रखाया।
0: गुरुद्वारे लाई पाव ने एक ना दसवां तुखार रखाया।
1: तेरा नेक रूप राव ना नवदे दसवां अंत ना जाए पाया।
0: के नौल खर प्यार जो गफान ना राख के वज्जा पन में जाया।
1: ए सच्चा सोला सच्चे कर गाओ,
0: खावो ता सोला कर साची इत्था सदा सच्च ते आवे।
1: सच्चो ते आवे जात तो पावे गुरमख चिना बचावे।
0: ए सच सुनना कखसा है जिस बख्शी सो

0: फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे बच्चे ने देख आके मत्था टेक के तुसी लंगर हाल जाके and then make sure I want to see everybody in class राम ना बैठ के, ठीक है? cuz मैं थानू कॉल की क्या, you guys miss PF कैंडी नहीं मिलना। हां जी, हां जी, ठीक है। सो तुसी हुण देख शक के गन को लंगर हाल। हां जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

महाभक्षो बोलचो की देखे महाभक्षो से ही पहले जन्म लो जिन्हें मिले तेरा नाम चेते आवे।

जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सह सु सियाणपा लख हो है ता एक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल हुकमर जाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी होवन जिया हुक्म लै वड्याई हुक्मी उत्तम नीचा हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बगसीसा इक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमें कहे ना कोए गावे को तान हुए किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाइया चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तन खे है गावे को झील फिर दे है गावे को जापे दिसे दूर गावे को विखे हादरा हदूर कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट दिंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसे वे परवाह साचा साहेब साच नाए भाख्या भाउ अपार आखे मंगे देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिया जित दिसै दुरबार मोह कै बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडे आई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख दुआर नानके वह जानिया सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी गुणी निधान गावी आए सुनी आए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए

के तिया सुरती सेवक के ते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड़े आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िए बहुते अनूप ता किया गल्ला कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथै घड़िए सुरत मत मन बोध तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सोध

सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर विखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथिता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार विखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहा।

रहा। हर जन के वट भाग वडेरे, जिन हर हर सरदार प्यास, हर हर नाम मिले त्रिपतासा, इमल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागी निजम पास। जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल

तुद बिन अवरण जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना। जो सेवै तुद जी जन नानक तन कुरबाना। अर त्यावे तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी। से मुगत पै जिन अर त्याया जी तिन टूटी जमकी फासी। जिन नर पौ जिन अर नर पौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी त्यारा रूप समासी। से धन जिन अर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी।

जी तप तप जपे बेअंता तेरे अनेक पड़े व सिमरत सा सत जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुर जेवड़े अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुदे आपे सृठ सब उपाई जी तुदे आपे सरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे खा जन होई आसा महला चौथा।

नित नित जीअड़ संभालीअन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल देह सजनिया सीसड़िया ज्यो होवै साहिब स्यों मेल कर कर इहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरी आए नानक से दया वन राग आसा महला पहला छिया कर छेह गोरा छे उपदेसा छेह घर छेह गोरा छे उपदेस गुर गुर को वे सनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कार आख वढाई तोय रहा विसया सया कड़िया पैरा तिथि वारी माहो हुआ सूरज को रोते अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलिया लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनाहता शब्द वाज अंत भेरी राम सहस ताव नैन नान नैन है तोहे को सहस मूर्त नायक तोही सहस पद बिमल नानक पद गंध बिन सहस ताव गांधे विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिस दा चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावे सो आरती होए हर चरण कवल मुख रंद लो बिता मन वणद नई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग कोहे जाते तेरे नाए वासा रागौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करो नगर ब परेया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखता लिखे कृपाया मन हरले मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे राम सागतरा साधना जाने अंत नियंत्र होमे कंडा है ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे जम काल सह सिर डंडा है।

को कर संतन की धूरे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग श्री राग महला पहला। घर पहला मोती दा मंदर उसरे रतनी ता जड़ाहो। कस्तूर कंगु अगर अगर चंदन लीप आवे चाओ। मद देख भूला विसरे तेरा चेत ना आवे नाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ। मैं अपना गुर पूछ देख आवरना ही था उराओ। धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ। मोहनी मुख मणि सोहे करे रंग पसा।

जिथे लिखा मंगिए तिथे होए सच्चा निशान रहाउ। जिथे मिले वडियाइया सद खुशियां सद चाओ। तिन मुख टिके निकले जिन मन सच्चा नाओ। कर्म मिले ता पाइए नाही गली वाओ दुआओ। एक आवे एक जाए उठ रखिए नाव सलार। एक उपाय मंगते एक ना वड्डे दरबार। अगे गया जानिए विरनावे वेकार। पै तिरे डर अगला खप खप छिजै दे नाम जिन्ना सुल्तान खान हुंदे डिठे खे। नानकी उठी चलिया सब कूड़े टुटे ने। श्री राग महला पहला। सब रस मिठे मन्या सुनिया सा लोने खट तुरसी मुख। बोलना मारन नाद किए छत्ती अमृत भाऊ एक।

खुआर। जित चढ़िया है तन पीड़ी है, मन में चले विकार। घर मंदिर खुशी नाम की, नजर तेरी परिवार। हुक्म सोई तुद भावसी हो।

अवर न करना जाए। गुरमुख वस्त विसाही है सच वखर सच रास, जिनी सच वणजिया गुरपुरे साबास, नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला, तात मिले फुन तात को, सिपती सिपत समाए लाल गुलाल गहबरा, सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोखिया, सच मिले संतोखिया, हर जप एक है पाए भाई रे संत जना की रे न, संत सभा गुर पाइए मुक्त।

पहल प्यार गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार त्रिभुत कर्म कमाइए आस अंदेसा होए क्यों गुर बिन त्रुटि छूट सी सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछाणिए नदर करे मल धोए गुर बिन गुर मैल ना उतरे बिन हर क्यों घर वास एको शब्द विचारी है अवर त्यागे आस नानक देख दिखाइए आओ

जब लग शब्द ना भेदीए क्यों सोहै गुरुद्वार नानक तन सुहागनी जिस जिन सह नाल प्यार श्री राग महला पहला

दुख भरे बिनसे दूजे पाए मूढ़े राम जपो गुण सार हमें ममता मोहनी सब मुठी हंकार राव जिनी नाम वसारिया दूजी कारे लग दुबदा लागे पच मुए अंतर तृष्णा अग गुर राखे से उबर होर मुठी तंदे ठग मुई प्रीत प्यार गया मुआ वैर विरोध धंधा थका हो मुई ममता माया क्रोध कर मिले सच पाइए गुरमुख सदा निरोध सची कारे सच मिले गुरमत पल्ले पाए सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दरगे पैदा जाए श्री राग महल पहला तन जल बल माटी पया मन माया मोह मनूर अवगुण फिर लागू पहे कूर बजावे तूर बिन शब्दे परमाही है दुबदा डोबे पूर मन रे शब्द तरो चित लाए।